बसीरा हंसा अपारी बाका मेरो मुटु को चिता बुझाऊं का सरी तिमी नहीं भाना हजारों संखा लाग सकीना माया हरू का कविता माथी तैनी बुझी देऊना माया का कुरा आखा।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 11 बज्यो।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला मध्याह्नको 12 बज्यो।